को नया वर्ष को अवसर में होम अप्लायंस को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैश बैक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ ही इंस्टेंट कैश बैक भी बम्पर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद कर सकता।